मन करता है। ये पवित्र शब्द सतगुर अपने सुनी अरदास कारज आया सगला रास। जब सतगुर के चरणों में अरदास की फिर सतगुर ने अरदास सुनी। जेड़ा अरदास सुनता है, जेड़ा अपने सिख की लाज रखता है, फिर उसके चरण तो के पेड़ नूं क्यों ना मन करे। कई कहंदे ने अरदास की पर अरदास पूरी नहीं हुई। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का महावाक है, बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास। अरदास कभी बिरथी नहीं जाती। श्री आनंदपुर साहब हजारां संगतां दर्शनां वास्ते आंदियां हन। इन्हां संगतां दे विच एक पति पत्नी और एक इन्हां दी छोटी बच्ची वो भी आए हन। एक महीना श्री आनंदपुर साहब रहे। इस बच्ची दे माता पिता ते चले गए पर ए ना गई। ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के महल माता साहब देवा दे कोल ए बच्ची रहन लग पई। समा बीतिया, वसाखी वाले दिन केसगढ़ की पवित्र धरती से धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अमृत की दात दी। इस बच्ची ने भी अमृत छकिया। पहला नाम बसंत लता सी, अमृत छकिया ते बसंत कौर बन गई। श्री आनंदपुर साहब के किले नूं जिस वक्त घेरा पिया और गुरु साहबां ने आनंदपुर साहब का किला जिस वक्त छड़िया, सरसा नदी पार की थी, सरसा नदी पार कीता, गुरु साहबां दा सारा वही इत्थे आके विछड़ गया। तां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वड्डे साहिबजादे ते चालीक दे करीब सिख इक पासे, तां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे छोटे साहिबजादे अते माता गुजरी इक पासे, सारा परिवार और सिख विछड़ गए। इस समय जिहड़ी ये बसंत कौर सी इहदे हाथ विच भी नंगी कृपान है, कमर कसा कीता है। ये भी अपने सिंह वीरां दे नाल दुश्मनां नाल लड़दी हुई नदी पार करदी है। ठोकर लगी, थले डिग पई, सिपाही पकड़ के समुंद खान दे कोल लै गए। समुंद खान ने कहा, बसंत कौर ना तेरा कलगियां वाला इत्थे आना, ना कोई तेरा सिख भरा, मेरी बेगम बन जा राज करेंगी। पर बसंत कौर ने कहा, समुंद खान मैं कलगियां वाले पिता दा अमृत छकिया, मैं प्रण कीता दुनिया विच मेरा कोई पति नहीं होवेगा, अपना जीवन कलगियां वाले पिता दे लेखे ला दिता है। बसंत कौर नूं कैद कीता गया, तसीहे दिते, लालच दिते, पर बसंत कौर डोली नहीं। आखिर एक कैद खाने विच बसंत कौर नूं कैद कीता गया। समुंद खान उस कैद खाने विच आया, बसंत कौर नूं कहण लगा, बसंत कौर तेरा कलगियां वाला गुरु चमकौर दी गढ़ी विच मारिया गया, हुण तेनूं बचाण वाला कोई नहीं। समुंद खान अगे होया, बाहां फैलाईयां हन बसंत कौर नूं पकड़न वास्ते, पर बसंत कौर थड़े तो इकदम मुठ के खलोई, गरज के कहण लगी, ओ दुष्टा परा हो जा, ओ देख मेरा कलगियां वाला पिता आ गया। जद कहा, ओ देख मेरा कलगियां वाला पिता आ गया है, उस वक्त बसंत कौर नूं प्रतख दर्शन उस कैद खाने विच हो रहे हैं। ते समुंद खान मानो पत्थर दा बुत हो गया,
हिलजुल नहीं सी सकदा। फिर इसने बेनती की, बसंत कौर मैनू बख्श दे, मैं भुल गया। ते बसंत कौर ने कहा, खिमा मंगनी है ते मेरे कलगियां वाले पिता कोलू मंग। फिर इस मुंद खान ठीक होया, बसंत कौर दे पैरां दे मत्था टेकया, एक महीना कोल रख के सेवा कीती। जद धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लखी जंगल पहुंचे, फिर बसंत कौर नूं 100 सवारां दे नाल सतगुरां दे कोल भेजिया। सास यह है अरदास और गुरु दे प्यार दी शक्ति। आओ आपां भी गुरु ते भरोसा रखिए, हर दुख वेले सतगुरु साडी भी इसी तरह सहायता करन।

प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाव। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिलै तृप्ता सह, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तो

पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबियले, मन एक न चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना होन जती सती नहीं पड़िया, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं चौपाई पुनराशिष का काटा सीसा श्री अस्कीत जगत के ईसा पोहपन ब्रिस्त गगन ते पई सब हिन आन बधाई दई तन्य तन्य लोगन के राजा दुष्टन दाहा गरीब निवाजा अखल पवन के सृजन हारे दास जान मोहले हो उबारे कव्यो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब तुम कावहो आप हाथ दे मोहे बचावहो सुखी बस है मोरो परिवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारी तारिया है चुन चुन सत्र हमारी मारिया है आप हाथ दे मुझे उबरिया है मरण काल का त्रास निवरिया है हु जो सदा हमारी पच्छा श्री अस्तु जो करियो रक्षा राख ले हो मोह राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी

संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, कट कट के पट पट की जानै। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही तेरा ते निरालम, जानत भेद भेद अर आलम।

सिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शाह श्वै सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पास चेताहि उबारा।

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ कर पूर्ण सुब्राता, किल्विक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्री अस्तुज भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसे व्याप्त कोई अड़िल्ला। सुने गो

दर्द पौ निकट न तिन नर के रहे हो जो जाकी एक बार चौपाई को कह है चौपाई संबत सत्रह है सहस पणिज अर्ध सहस।

आप जी वालों बेअंत माण सत्कार बेअंत माया दे गफे ढाडी जथे दे हौसला फजाई अंदर भेजे जा रहे ने। धन्यवाद करदे आ और समुचियां संगतां दी असीं चढ़दी कला लई अरदास करदे हां। ऐतवार दे दीवाना तक असीं आप जी दे नाल सांझ पाउणी है, तुसीं जरूर दर्शन देने। इतिहास असीं आप जी दे नाल लड़ी सांझी कीती और अगले दीवाना अंदर जिक्र करांगे वी ध्यान सिंह डोगरा जिहनूं शेरे पंजाब ने इन्ना माण दित्ता है, जिहड़ा चंद पैसों च भर्ती होया तो अपने आप नूं मालक समझ बैठा, जिहड़ा और शेरे पंजाब दे पिओ पोत्र खड़क सिंह और कवर नौ निहाल च पाड़ पवा देना है। खड़क सिंह नूं यार दे के मारनी और उसे दिन उहदे पुत ते सज्जा सट के उहनूं मार देना। किवें शेरे पंजाब दे पुत्रां नूं मारिया, अपने ने किवें गदारी कीती, बहुत ही विरागमई इतिहास है। मैं बहुत बार कई नहीं हुनी असी यह प्रसंग जिहड़ा छूहिया है, कई बार ऐसे साके संगत ना सांझ पाउणी साडे लई भी बहुत औखे हुंदे ने। अगले दीवाना अंदर सांझ पावांगे, जे असी आप जी ना होर विचारा करांगे तो समय की कुताही हो जाएगी। असी नहीं चाहते, असी अपने समा जिन्ना भी सानू दिता है उदू वध के असी समा संगत दे नाल सांझ पाईए। आओ जिथे असी आप जी का धनवाद करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज का धनवाद, आनंद साहब जी की बाणी छे पौड़ियां का जाप रल मिल के करिए।

हे प्राणनाथ गोविंद है कृपा निदान जगत गुरु, हे संसार ताप हरणय करुणा मैं सब दुख हरो। हे शरण जोग दयालय है दीनानाथ मया करहो, शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंथ नानक रा

मेरा प्यार तेरे नाल होंदा नहीं, हे मेरे सच्चे गुरु मेरा प्यार होंदा नहीं। बचपन तो

प्यार दे नाल भरी हुई है। इत्थों पता चलता है कि सतगुरु जी किन्ने वैरागी और कितने परमात्मा नूं प्यार करने वाले

पर मैनू एक गल दसो, इस गल दे नाल मेरा की संबंध? ये गल दसो। ते गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्यार दे विच भिज के नेत्र बंद करके आखन लगे, बहादुर शाह ओ बुढ़ा बाबा कोई होर नहीं, ओ तू ही होई सी जो एक एक प्रसादे नू तरसदा रहिंदा सी, तू ही होई सी। अज जन्म लैके सारी दुनिया ते राजा राज करदा है, किड्डे किड्डे नौकर चाकर तेरे अगे हाथ बन्नी खलोते ने, आ देख लै गुरु रामदास दीयां रहमतां तेरे कोल अज तक नहीं मुकियां, अज तक नहीं मुकियां, पता नहीं किन्ना चिर तू खाणियां ने, किन्ना होर सुख भोगना है, कौन जाने गुण तेरे चरणा ते डिग पिया, तेरी हो गया अज बहादुर शाह है सतगुरु, तेरे गुणा नू कोई नहीं जान सकता, तेरिया रहमता नू कोई नहीं जान सकता। सो सत्संगियो बख्शिश हो रही है, इसीलिए गुरसिख नू ए हुक्म है, तू पुन दान करदा रहा, तू गरीब दे मूह दे विच पांदा रहा, जिथे धन कमा के अपने बच्चियां दे मुख पांदा है ना, गरीब दे मूह विच भी पाया कर। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की आख रहे ने, गोलक राखे ने जो शलका करे व्यापार, कहे गोविंद सिंह लाल जी भोगे नरक हजार। जेड़ा दसवंद नहीं ना कटदा वो जीवदे जी भी नरक भोगदा है, उदा सारा धन हॉस्पिटलां विच कचहरियां विच मुकदमियां विच ही लग जाता है, भोगे नरक हजार, हजारा नरक जीवदे जी भोगदा है। नहीं बई, नेक कमाई करके किसे भुखे नू भोजन छका दिया कर, किसे तन दे नंगे नू कपड़ा पहना दिया कर, किसे गरीब दे बच्चे दी पढ़ाई दी जिम्मेवारी ले लिया कर, किसे गरीब नू किताबां ही ले दिया कर, किसे गरीब दी बच्ची दी शादी ते पैसे खर्च दिया कर। गुरु घर विच धन दी लोड़ है, उथे सेवा ला दिया कर। दसबंध कढ़न दे कई तरीके ने, कई तरीके ने, पर जरूर कढ़िया कर, कोई फर्क नहीं पैंदा। महीने दे विच 30 दिन ने, ते 2 दिन दी कमाई ला दिया कर गुरु लेखे, ते सतगुरु बख्शिया करेगा। बाबा नंद सिंह दी बख्शिश करदे सन, औखा वेला आ जावे ना ते कदी भी दसवंध नहीं रोकना चाहिदा। देखो बाबा जी दे किहो जे बचन ने, औखा वेला आ जावे कदी भी दसवंध ना रोको, फिर सौखा वेला छेती आ जांदा है, सौखा वेला छेती आ जांदा है। कौन जाने गुण तेरे, ऐ मेरे मालक, तेरे गुणा नू कौन जान सकता है।

उन्हें साढ़े किड़े कर्म ते खुश होके रहमता दा मीह बरसा देना है, सुख दी गुजारेगा जिंदगी। आ सतगुरु यही पवित्र उपदेश भी सुनदा रहे। आ देखो एक गरीबड़े बुढ़े बाबे ने एक दिन दी मजदूरी दे बदले गुरु दिया रहमता मिलिया ते सारी दुनिया ते बहादुर शाह ने राज किया। एक तिल मात्र भी कीता होया दान गरीब दे मुंह विच पाया व्यर्थ नहीं जाएगा। गरीब दा मुंह गुरु दी गोल, गरीब नू खवा के खाएगा ना, गरीब नू पहना के देखेगा ना, ते देख तेरे मन विच किड्डा आनंद आएगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बाणी विच आख रहे ने, दस नख कर जो कार कमावे ता कर जो तन घर में आवे, तिस्ते गुरु दसंज दो देही सिंह सुजस वो जग में ले। पुनदान सेवा सिमरन करन वाले दा जस दुनिया विच भी हुंदा है ते निरंकार दी दरगाह विच भी हुंदा है, कोई फर्क नहीं पैंदा। दो चार सूट महीने दे विच समांदा है, कट समा लिया कर, एक गरीब नू पहना दिया कर, गरीब नू पहना दिया कर। भी इस गल का ख्याल रखना है, जिथे दसा नौहां दी किरत करके अपने बच्चियां दे मुख विच पाना है ना, उथे दसबंध कढ के गरीब दे मुंह विच भी पा देना है। पर सतसंगियो अपना ते बड़ा ही माड़ा सुभा है, अपना हिस्सा भी खांदे हां गुरु का हिस्सा भी खा जांदे हां। जे आपां दसबंध नहीं ना कढदे ते समझो गुरु दे हिस्से का भी खाई जाते। 24 घंटिया दे विच ढाई तीन घंटे सवासां दा दसबंध बनता है, वह भी खा जाते। गुरु का धन भी खा लिया, गुरु का समा भी खा लिया, घर का गुजारा फिर भी नहीं चलता। भाई की करा, गुजारा ही नहीं चलता। पर कितों चले, जेड़ा किसे दा हक खावे उदा गुजारा चल ही नहीं सकता। मन के देख गुरु दी गल, तेरा घर स्वर्ग बन जाएगा, चलेगा तेरा गुजारा। गिण गिण के दसबंध कढ़िया कर, गिण गिण के दसबंध कढ़िया कर, कोई फर्क नहीं पैंदा। गुरु आपे ही भाग ला देता है, गुरु आपे ही रहमता कर देता है। तो इसलिए गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने सानू बार बार आख्या है, बई गोलक राखे ने जो छलका करे व्यापार, नेक कमाई कर गोलक राख, भाव अपनी कमाई विचों दसवंध गिण गिण के कढ़ी जाया कर, ते फिर देख इस चंगे सवा ते खुश हो के गुरु तेरी झोली विच किन्नियां रहमतां पा देवेगा। देंदा दे लेंदे थक पाए, देण वाला दित्ती तुरिया जांदा है, लैण वाले थक जांदे। देखो गुरु किवें बख्शिश कर रहा है, तू दाता गिणदा थक जाएगा, लेंदा थक जाएगा, देण वाले ने देंदा नहीं थकना। पर कदों, जदों गुरु दे हुक्म अनुसार चलेगा, जदों गुरु दा हुक्म पल्ले बन लवेगा। आओ मन विथियां जोड़िए, श्री गुलशन कुमार जी, श्री दर्शन कुमार जी, जिन्हां दा यह सोहना उदम के भाई गोपाल सिंह जी, जिन्हां दियां पुरातन गाईयां होईयां रीतां, जिन्हां नूं आप संगत बहुत ही पसंद करदे हो बंदशां नूं, उन्हां दे उदम दे नाल आप संगतां नूं यह बंदशां भेट कीतियां जा रहियां ने। आप जी ने अगे भी जो कैसेट तू मेरा पिता तू है मेरा माता आप संगतां दे भेट कीती है, उसनू प्यार दिता है, आस है कि इन्हां सेवादारां दी इह सेवा इसी तरह कबूलदे रहोगे ते असीस देंदे रहोगे। सतगुरु बख्शिश कर इन्हां ते, इसी तरह तेरी गुरबाणी दी सेवा घर घर विच
तेरे शब्दां दीआं कैसटां उचांदे रहण सब दीआं झोलियां गुरु रहमत नाल भरे ते कीर्तन समां समाप्त है कोई नहीं जान सकदा तेरे गुणां नूं कौण जाणे गुण तेरे।

अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसियाय गुरु के जन्म मरण होवै सिफत कसम दी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद जिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पातशाह सिरसा हंद सा जिस पा

0: आदेश तसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस कर कर वेखे सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार एक दो जी पौ लख हो है लख वह लख वीस
1: एक नाम जगदीश
0: ए त्रा हे पत पवड़िया चढ़िया होए इक्कीस
1: आकाश की
0: नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस जोर न जीवन मरण न जोर जोर न राज माल मंसोर
1: ज्ञान विचार जोर न जुक्ति ते संसार
0: जिस हाथ जोर कर विखे सोए नानक उत्तम नीच न कोए
1: रुति तिथि वार पवन पानी अग्नि पाताल
0: तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत कै रंग तिनके नाम अनेक अनंत
1: कर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार
0: तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निसान
1: पकाए उते पाए नानक के जापे जाए
0: धर्म खंड कह हो धर्म ज्ञान खंड का खो कर्म
1: केते पवन पानी वह संतर केते कान महेश
0: केते बरमे घाट घड़िया रूप रंग के वेश
1: कर्म भूमि मेर केते केते तूप देश
0: केते इंद चंद सूर केते केते

0: सूत्र में।
1: नमो रोगहर्ता नमो राग रूपे
0: नमो शाहम नमो पूपे
1: नमो दान दाने नमो मान मने
0: नमो रोग रोगे नमस्तं सनाने
1: नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्र
0: नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्र
1: सदा सच्चिदानंद सर्वंग परनासी
0: अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी
1: सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता
0: अदो ऊर्ध्व अर्धं अंगं हर्ता
1: परम परम परमेश्वर पुरुष पाल
0: सदा श्रद्धा से दाता दयाल
1: अशेदीय पेदीय नामंग काम
0: समस्तो पराधि समस्त।

0: खेल खेल अनंत को फिर एक
1: दे पेव ना जानी जे वेद और देव
0: रूप रंग ना जात पासु जानिए के जेब
1: सात मात ना जात जग जन मन विहीन
0: चकर बकर फिर चतर चक मानिए पुरतीन
1: लोग चौदे के विके जग जाप जे जाप
0: आ देव नाद मूरत थाप्यो सवे जे थाप
1: परम रूप नीत मूरत पूरन पुरख पार
0: शर विचव रचो छंजन कर्ण पंजन हार
1: कालहीन कलाश युक्त काल पुरख देश
0: धर्म दान सो परम रहत भूत लख पेश
1: अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम
0: गर्भ कन्या दुष्ट पंजन मुख दाय काम
1: आप रूप मी कनु सुत एक पुरख अवतूत
0: गर्भ कन्या शर पंजन आद रूप सूत
1: अंग हीन पंग नातम एक पुरख पार
0: सर्व लाय सर्व काय सर्व को विद पार
1: सर्व गंता सर्व हंता सर्व तयन पेक
0: सर्व सातरा जानिए जे रूप रंग रेख
1: परम वेद पुराण जाके नेत पाखत नित
0: और सिमरन प्राण सातर न आवी बहु चित
1: मधुपाशन त्व प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार
0: आचर अपांग उपमा अनंग
1: अनपो प्रगास ने सेना ना
0: आजान बाहु शाहन शाहु
1: राजान राजपान अनुपान
0: देवान देव उपमा महान
1: इंद्रान इंद्र बाल अनुबाल
0: रंकार रंकाल अन काल
1: अनुभूत अंग अपय
0: गंध में तपार गुण गण उदार
1: गुण गण प्रणाम निर्भय काम
0: अद्भुत प्रचंड मित गत

0: शान्त्वे प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाश
1: अनंदन स्वरूपे अपंगत प्रभुते
0: अनंतं परमात्मे सदा सर्वसाते
1: अगाशुते निर्वात प्रभुते
0: अनामे त्रिभंगी त्रिकामे
1: नरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे
0: न पुत्रे न सत्रे न मित्रे
1: न ताते न माते न जाते न पाते
0: साकं सरीखे मित्तो अमीके
1: सदैवं प्रवाहे अजेह अजाह पढ़ दो
2: भगवती शान्त्वे प्रसाद
3: साध के जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है
1: हमें चुल सलाम है समस्तुल कलाम है
3: साहिब दिमाग है के हुसनल चराग है
1: के कामल करीम है के राजक रहीम है
3: रोज दिहंद है के राजक रहिंद है
1: करीमुल कमाल है के हुसनल जमाल है
2: करीमुल के राज है करीबुल निवास है
1: हरिफुल शिकान है रे आसल फिकन है
2: ललकन परनास है समस्तुल निवास है
1: अगंजुल करीम है रजायक रहीम है
2: समस्तुल जुबा है के साहिब के राह है
1: के नरकम परनास है बैतुल निवास है
2: सरपुल गवन है हमें सुल रवान है
1: तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है
2: परम परम ईस है समस्तुल अदीस है
1: अदेशुल अलेख है मेशुल अपेख है
2: जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है
1: करीमुल कमाल है के जुल्ला जमाल है
2: के अचलन प्रकाश है के अमितो सुभाष है
1: के अजब स्वरूप है के अमितो प्रभूत है
2: के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है
1: के अचलन अनंग है के अमितो पंग है
2: मधुपाय चांद त्रय प्रसाद मुन मन पर नाम गुन गन मुदाम
1: हर भर अगंज हर नर पर पंज हर
2: गन पर नाम मुन मन सलाम
1: हर नर अखंड भर नर अमंड
2: अन पव अनास मुन मन प्रकाश
1: बुद्ध गण पर नाम जल थल मुदाम
2: अंशिज अंग आसन अपांग
1: उपमाय अपार गत में तू उदार
2: जल थल अमंड दिस विश बे अमंड
1: जल थल महंत दिस विश बे अंत
2: अन पव अनास ते तर तुरा
1: आजान बाहु एक के सुदाहु
2: ओंकार आद कथनी अनाद
1: खल खंड के आल गुरु वर काल
2: सरकार पर नाम चित चरण नाम
1: अंशिज गात अजिज ना बात
2: अंजज गात अनरंज बात
1: अनकुंड पंडार अंडट पार
2: अडीट तरम अत डीट कड़म
1: अनबन अंत दाता महंत
2: हर बोल मना चंत्र प्रसाद कर नाले है और काले है
1: कल खंडन है मैं मंडल है
2: जगदेश्वर है परमेश्वर है
1: कल कान है सर्व वारण है
2: कृत के तन है जग के कण है
1: मन मान्या है जग जान्या है
2: सर्पन पर है सर्पन कर है
1: सर्पास्य है सर्वनास्य है
2: करुणा कर है विशंबर है
1: सर्वेश्वर है जगदेश्वर है
2: ब्रह्मंडस है कल खंडस है
1: पाते पर है करुणा कर है
2: जपा जप है थपा थप है
1: अग्रता कीर्तन अमृत अमृत है
2: अमृता अमृत है करुणा कृत है
1: अत्ता कृत है तरनी कृत है
2: अमृतेश्वर है परमेश्वर है
1: अत्ता कृत है अमृता अमृत है
2: अजबा कृत है अमृता अमृत है
1: नरनायक है खलकायक है
2: विशंबर है करुणालय है
1: निपनायक है जपायक है
2: पंजन है अर्गंजन है
1: रिप्तापन है जब जापन है
2: अकलन कृत है सर्वा कृत है
1: कर्ता कर है अर्ता हर है
2: परमात्म है सर्वात्म है
1: आत्म वास है जस के जस है
2: जंग प्रयात चंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्र
1: नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्र
2: नमो अंधकारे नमो तेज तेजे
1: नमो बिंद्र बिंद्र नमो बीज बीजे
2: नमो राजस तामसन सात रूपे
1: नमो परम तंतं अतंतं स्वरूपे
2: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने
1: नमो मंत्र मंत्रे नमो ज्ञान ज्ञाने
2: नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने
1: नमो भोज भोजे नमो पान पाने
2: नमो कले कर्ता नमो सात रूपे
1: नमो इंद्र इंद्र अनादं प्रभुते
2: अलंकार रूपे अलंकार अलंके
1: नमो आसे आसे नमो पांक पंके
2: अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे
1: त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे
2: एक अश्री चंद अजय अलय अभय अभय
1: अबु अजु अनास अकाश
2: अगंज अपंज अलख अपाख
1: अकाल दयाल अलेख अपेख
2: अनाम अकाम अगा अडा
1: अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी
2: न रागे न रंगे न रूपे न रेखे
1: अकर्म अपर्म अकंजे अलेखे
2: जंग प्रयात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे
1: अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे
2: कामन बेपूते समस्तुल स्वरूपे
1: कर्मन परनासी सुतर्मन प्रभूते
2: सदा सचदानंद सत्रन परनासी
1: करीमल कुलिंदा समस्तुल निवासी
2: अजायब पूते गजायब गनी में
1: हरियं करियं करीमुल रहीमे
2: चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते
1: शंभम शुभम सर्वदा।

0: हार पछैया,
1: तोरत देश मलेंद मवासन माते गजान के मान मलैया,
0: गारी गरान को तोरन हार सो बातन ही चकचार लवैया,
1: साहिब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया,
0: दानव देव निंद निसाचर पूत पवेक पवान जपेंगे,
1: जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे,
0: पुन प्रतापन बाट जैत तुन पापन के बु पुंज कपेंगे,
1: सात समूह प्रसन्न सब जगत सबे अब लोक जपेंगे,
0: मानव इंद्र गजेंद्र नरात पर जोन त्रिलोक को राज करेंगे,
1: कोट स्नान गजायक दान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे,
0: ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत फसे जम फास

0: लगायो
1: नाथ फिर लिए सात समुद्र ने लोग गयो पर लोग गवायो
0: बास कियो बखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बिठायो
1: साथ को सुन लियो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो
0: काहू ले पाहन पूंज तरियो सिर काहू ले लिंग गड़े लटकायो
1: काहू लिखो रवाची दिशा में काहू पिशा को

0: चर्चा पूर्ण हुई जिति अचार
1: तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा
0: गावो आफात मोहि बचावो
1: सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा सेवक सिख हमारे तारिया चुन चुन सत्र हमारे मारिया पूजो सदा हमारे पच्चा श्री अस्तु जो करे हो रचा दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दसकंता
0: काल पाए शिव जी अवतरा
1: काल पाए कर बेसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा
0: काल जोगी शिव की हो वेद राज में ज्योति हो
1: जवन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताहे हमारा
0: जवन काल सब जग बनायो देव देश में जायो
1: आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा
0: नमस्कार सी को मारी सुगु राज में आप सवारी
1: सिवतन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोह वध कियो चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला एक एक की पीर पछान घट घट के पट पट की जान जब आकर्ष करत हो कब हूँ तो मैं मिलत देह तर सब हूँ
0: आप आपनी बुझू चारे
1: तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद आलम ताका मूड चारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत रह भेव तुमरा लखा न जाए पसारा कहवे सजा प्रथम संसारा अंड जेर से तजकीनी उत भुज खान बहुर रचिनी सगरी श्रेष्ठ दिखाए चम भवा जुआ स्वरूप से हम भव
0: तुम करो सिख बार सिख सुन करो
1: दुष्ट जित उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता
0: जिनके दुष्ट को तुम
2: परे परे तिहारे तिनके
1: तुम संकट सब तारे
0: जो कुल कोई बात आए है ताके काल गिनी आए है
1: रचा हुए ताहे सब काला दोष रहित डरे तत्काला
0: ताके ताप तनिक मार
1: रेत सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट सास वह सके ना कोई
0: एक बार जित में सिंबारा काल फास्ते ताए बारा
1: जिन्नर नाम तिहारो कहा दार दुष्ट दोग ते रहा
0: शरण दियारी आप आते ले बारी
1: सर्व ठोर मोह साई दुष्ट दोग ते ले हो बचाई
0: कृपा करी हम बचो माता कंस करा पूर्ण सब राता
1: विष्णु सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता
0: श्री शिव दे रियाला पूर्ण ग्रह कंत काला
1: मन बाशत फल पावे सोई दुख न तिसा व्यापत कोई अरेल
0: जो यास रस न पावे स्ने मोच लचतता आवे
1: दुख दर्द पौ निकलना ते नर के रहे हो जो जाती एक बार चौपाई को कहे चौपाई
0: समझ संवत सत सहस नीचत सहस दीन की जय
1: पादम सुधि अष्टमी रविवारा तीर सतद्र ग्रह सुधारा
0: पाएंगे जब ते तिप ते अंक त्रिने अनियो
1: राम रहीम पुराण पुराण ने कहे मत एक न मानियो
0: सासु वेसो बेट के मेक न जानियो
1: श्री आसमान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो

0: नानक गुरमुख जो नर खेले सो जिन बाजी कर आया पौड़ी वड्डी हूँ वड्डा पार तेरा मर्तबा
1: रंग पुरंग एक न जा।

0: श्री वाहेगुरु जी की फतेह।
1: ठाकुर तुम पैर दास जियो पिंड सब मात पिता हम